अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों के इंतज़ार में हम छोटी छोटी खुशियों को देखना भूल जाते हैं। एक प्याली गर्म चाय, अपनों का साथ, शरीर में ऊर्जा और आंखों में नया सपना। यकीन मानिए, जिंदगी बहुत कुछ दे रही है, बस हमें उसे महसूस करना आना चाहिए।

एक खूबसूरत विचार है आपसे शेयर करना है। खुश रहने के लिए सब कुछ अच्छा होना ज़रूरी नहीं, बस जो अच्छा है उसे दिल से महसूस करना ज़रूरी है।

0: सुबह का सूरज जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो उसकी किरणें हर जगह पहुंचती हैं। वो ये नहीं देखती कि कौन सा घर बड़ा है और कौन सा छोटा। उजाला सबके लिए होता है और शायद अच्छाई भी ऐसी ही होनी चाहिए। हमारी मुस्कान, हमारे अच्छे शब्द और हमारा अपनापन किसी एक व्यक्ति तक सीमित क्यों रहे।
1: क्या सेवा कर सकता हूँ?
2: सेवा के बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल मुझे एक नहायत स्पेशल किस्म का बुके चाहिए।
1: स्पेशल बुके? लड़के के लिए चाहिए या लड़की के लिए?
2: इससे आपको मतलब?
1: जी मुझसे तो नहीं, लेकिन फूलों का फूलों से मतलब है। I mean, हर फूल हर जगह नहीं भेजा जा सकता।
2: जी
1: जी हाँ,

0: रंग और खुशबू का अपना एक मिजाज होता है, उसका एक करैक्टर होता है। फूलों में भी सनाना और मर्दाना फूल हुआ करते हैं। अब देखिए ना, मर्दों को सनाना और औरतों को मर्दाना फूल भेज जाते।
1: समझ गई, ये बुके एक लड़के के लिए है।
0: ओह दैट्स फाइन। अच्छा ये बताइए कि वो लड़का आपको क्या लगता है? देखते बुरा मत मानिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर वो भाई है तो फूल अलग होंगे और वो फ्रेंड

0: अलग होंगे, और वो फ्रेंड है तो फूल दूसरे होंगे, अगर वो बॉयफ्रेंड है तो फूल नेचुरली तीसरे होंगे। क्या राय आपकी?
1: ओ माय गॉड, वो ना भाई है ना फ्रेंड है ना बॉयफ्रेंड। और कुछ पूछना है आपको?
0: जी नहीं, इतना बहुत है। आप एड्रेस छोड़ जाइए, ओके पहुंच जाएगा।

दोस्तों, हर इंसान की आंखों में कोई ना कोई सपना जरूर होता है। किसी को अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना है तो कोई अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन चाहता है और कोई बस मन का सुकून तलाश रहा है। सपने अलग हो सकते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता एक ही है, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना। बस इतना जरूरी है कि आप कल से एक कदम आगे हों। सुबह हमें बस यही सिखाती है।

आज की सुबह जाते जाते बस यही कहूंगी, सूरज की तरह रोशन रहिए, हवा की तरह सहज रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए और नदी की तरह आगे बढ़ते रहिए। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब आपसे अर्चना गोयल विदा लेना चाहेगी। नमस्कार।

0: ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 మెగాహెడ్స్. టుడే క్లాక్ లో సమయం 6 గంటలకు వస్తుంది. మరి కాసేపట్లో హిందీలో అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు.
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे. इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है. अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे. वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.

0: यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यस्य साक्षात् प्रसन्न शिवस्य। इति श्री शंकर भगवत्पाद विरचितं श्री सांब सदा शिव भुजंग प्रयात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9। समय हो चला है सुबह के 10:59 और अब हम आपको थोड़ी देर में लिए चलते हैं न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11:59। आपको थोड़ी ही देर बाद हम लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन पाएंगे समाचार दोपहर के 12 बजे हिंदी में समाचार, और दोपहर के 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार। एट 12 यूल बी लिसनिंग टू न्यूज़ इन हिंदी एंड एट 12:05 यूल बी लिसनिंग टू न्यूज़ इन इंग्लिश इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ। स्टे ट्यून्ड।

रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

కాల చరితం జ్వలించే జీవితాల కథనం ఇదేలే తరతరాల చరితం జ్వలి

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

మీరు వింటున్నారు ఏఐఆర్ ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9, సమయం 5:35.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

వింటున్నారు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 हो चुके हैं। कतर के साबिक़ अमीर और बाबाए कौम शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी 74 बरस की उम्र में इस फानी दुनिया से रुखसत फरमा गए हैं। इस अजीम सानहे पर जहां कतर में गहरे दुख और मलाल का समा है, वहीं पूरी दुनिया बिलखुसूस बरसग़ीर हिंद में भी सफ़े मातम बिछी हुई है। शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी महज एक हुक्मरान नहीं बल्कि जदीद कतर के मेमारे हकीकी थे। जब उन्होंने जून 1995 में कतर की क़यादत संभाली, तब ये खित्ता माशी और सिफारती तौर पर एक महदूद दायरे में सिमटा हुआ था, लेकिन इनकी दूरंदेश क़यादत ने कतर के गैस के वसी ज़खायर को मुल्क की तकदीर बदलने के लिए इस्तेमाल किया और चंद ही बरसों में कतर को दुनिया की अमीर तरीन और बाअसर तरीन मैशियतों की सफ में ला खड़ा किया। हुकूमत हिंद ने कतर के साथ गहरे और देरिना मरासिम के एहतराम में कौमी सतह पर एक रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान किया है, जहां आज तमाम अहम सरकारी इमारतों इमारतों पर तिरंगा आधा झुका हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ियती पैगाम में उन्हें एक अजीम मुदब्बिर और भारत का सच्चा दोस्त करार दिया।

सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, जो कि लिया गया है फिल्म दोस्ताना से।

0: बरसों बाद ऊँट में निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार

समीन आइए सुनते हैं अगली गजल जगजीत सिंह की आवाज में, जिसके बोल है वो कागज की कश्ती।

समय आइए सुनते हैं हरी हरन की आवाज में ये खूबसूरत सी गजल, जिसके बोल है लफ्जों की तरह।

0: स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बारी बारी नशर किए जाएंगे।
1: उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं

0: ही गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods, and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal's South 24 Parganas district. social media post, the president said her thoughts and prayers are with the affected families. Expressing condolences to the bereaved families, the vice president prayed for the speedy recovery of those injured.

0: have some impact on the market in this week. So, of course, the Monday has started on slightly positive note, but for the next 4 or 5 days, we do not see much relief kind of thing. There will be more volatility and more it will be towards the downward risk.
1: And more anxiety because Strait of Hormuz stands closed again.
0: We do not know what is happening. Somebody is saying that it has closed down. Somebody is saying, no, the ships are still going on. But there are problems which are affecting the moods or the sentiment in the market.
2: तो आपको क्या लगता है शशि जी बाजार की आज की हालत देख के हालांकि आखिर में थोड़ा मामूली बढ़त दिखाई दी लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लगातार ये उथल पुथल चलती रही और ये संकेत यही है कि इसी तरह से आगे चलेगा
0: बिल्कुल देखिए आज अगर मैं 2-3 सेक्टर्स की बात करूं जहां पर हमने नतीजे का असर देखने को कह सकते हैं जैसा मैंने कहा कि तकनीकी कंपनियों के शेयरों में अच्छे सुधार आई वही विमानन बाजार की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसमें हमने गिरावट देखी क्योंकि पश्चिम एशिया में अगर उथल पुथल होता है तो उसका असर हवाई ईंधन के ऊपर पड़ेगा हवाई ईंधन के दाम के ऊपर पड़ेगा दूसरी बात यह है कि कई उड़ानें जो हैं वो दोबारा से रद्द होने की आशंका है तो इन सब के बीच में विमानन सेक्टर में हमने देखा विमानन क्षेत्र में हमने देखा कि थोड़ा सा मामला जो है वो बहुत ही थोड़ा नहीं बहुत ही कमजोर था लेकिन एक अच्छी वही बात जो मैंने कहा कि थोड़ा सा जो हमें सुधार देखने को मिल रहा है वो तकनीकी क्षेत्र में मिल रहा है और इसके अलावा थोड़ा बहुत हम FMCG सेक्टर में भी जो है वो हम सुधार देख सकते हैं लेकिन ये पूरे वीक की बात करें पूरे सप्ताह की बात करें तो बहुत ज्यादा कोई सुधार की उम्मीद जो है वो हमें नहीं दिख रही है
1: Alright, now we're joined by Sitaraman from Mumbai. Yes, Sitaraman ji, please ask a question.
3: I tell you, I hear your program occasionally, but one thing I find that you are not prepared to take the responsibility when you give some views or some opinion. You disown. हमारे को जिम्मेदारी क्योंकि जैसा मरने मरो
1: All right, I think the voice was not too clear, but anyway, let's move on.
2: एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं एशिया के बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला दक्षिण कोरिया का कोस्पी 9% की गिरावट के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सूचकांक बन गया बाजार की गिरावट रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर लगाया गया और कारोबार 20 मिनट तक अस्थायी रूप से रोक दिया गया चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2.1% और जापान का निकेई 1.9% तक गिरा दूसरी ओर हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में लगभग 0.2% की तेजी दर्ज की गई ताइवान का ताइएक्स और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों ही सकारात्मक रुझान के साथ स्थिर रहे शशि जी जो खास चीज हमारा ध्यान आकर्षित करती है अगर दक्षिण कोरिया की हम बात करें जहां पर इतनी तेज गिरावट हमें देखने को मिली और मोटे तौर पर और बाजारों में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति एशिया में हमें नहीं दिखाई दे रही
0: दक्षिण कोरिया की बात का जिक्र करना यहाँ पे ज्यादा अहम होगा क्योंकि कुछ समय पहले दक्षिण कोरिया में एक या दो ऐसी कंपनियां थीं जिनके शेयरों में काफी तेज उछाल आया था और उसकी वजह से दक्षिण कोरिया के जो कहते हैं कि बाजार पूंजीकरण जो है वो काफी आगे हो गया था और ये कहा गया कि दक्षिण कोरिया और ताइवान के शेयर बाजारों की स्थिति देखिए लेकिन उस समय भी अगर हम लोग अगर उस बात को दोबारा याद करें तो उस समय हमने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया था कि दक्षिण कोरिया हो ताइवान हो या ऐसे बाजार हो इसमें एक या दो या तीन कंपनियां चार कंपनियां जो है वो बाजार को ऊंचा ले जा रही हैं जबकि हमारे यहाँ जो बाजार में स्थिति है कि हम एक विविध बाजार हैं हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं बहुत सारे क्षेत्र हैं और उन सभी क्षेत्रों का मिला जुला असर देखने को मिलता है तो अगर एक लंबे समय की प्रवृत्ति की बात करें तो वो दक्षिण कोरिया हो या फिर ताइवान की बात करें या ऐसे बाजारों की बात करें शायद वहां देखने को नहीं मिलेगा जबकि भारतीय बाजारों में हमें वो स्थिति देखने को मिलेगी और वो बात आज काफी हद तक जो है वो सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है
2: और यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि आज सोमवार है और हर एक सोमवार की तरह हम श्रोताओं के प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं श्रोताओं आप हमसे फोन करके सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं इन नंबरों पर 2-3-3-1-4-4-4-4 और 2-3-3-1-0-4-8-1 और हमारा तीसरा नंबर है 2-3-3-1-0-4-8-1

0: 7107106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें।
1: शिशिर, नोइंग द मार्केट्स एट द मोमेंट, एज वी सेड इट रोज बाय 47 पॉइंट्स नाउ एंड स्टिल द मार्केट्स आर वोलेटाइल, नो थैंक्स टू द वॉर सिचुएशन एंड द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड द एनर्जी थ्रेट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, आफ्टर सीइंग ऑल दिस, इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इफ समबडी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट? वॉट इज योर ओवरऑल, हाउ वुड यू एनालाइज द न्यू कमर्स? Should wait and watch, or somebody with a high risk appetite should plunge into the stock market? How would you explain that?
2: So you have mentioned various factors, starting from war to crude oil. But one more factor needs to be added, and that is the monsoon, which has much wider impact, because almost our aggregate economy is depending upon this thing. So what I mean to say that at this moment, when any kind of investor who is, say, a beginning, who is a beginner or newcomer in the market, it would be better if you just wait for some more time, because the volatility is too much, uncertainty is at high level, and even if he wants to invest, the mutual fund route is much better. And mutual fund, not just in the equity one, I would say go on the diversified one. Some part in equity, some part in debt, some part in the hybrid. That will give some more comfort. Entering into the market at this point of time, my advice would be it's not the good time.
1: Don't put all your eggs in one basket, as they say. All right, we're now joined by Ramanathan from Chennai. Yes, sir, Ramanathan ji, please ask a question. Yeah.
3: Yes, good evening, Market
1: Mundra. Good evening, ji.
3: Yeah. See, I have two questions.
1: Yeah, sure.
3: One is, how is this dollar index calculated? And one more question is, with this inflation going up, can we see any interest rate hike, repo rate hikes?
2: The first question is about the dollar index. It is basically composition of six foreign currencies, and any kind of changes in those six currencies impact the dollar index. And dollar index gives basically indication about that what is happening in the dollar, what kind of a strength we are going to have. Coming to your second part of the second question, which is about the inflation and the interest rate. Basically, the 4% rate is something which is sometime it is giving an indication. Is it a time for rate hike? I think we will have to wait for at least two more months. So that is why the number which we have seen today is more than 4%. That means the median rate of targeted inflation rate has been breached, that 4%, after January 2025. Now the expectation is that for the next 2 or 3 months, it could be in the range-bound manner, but depends upon that how the monsoon covers entire nation and what is the swing situation. So we are expecting that in the second half of the fiscal, there may be a rate hike, but that will depends upon that what kind of inflation we see in the month of August or September.
0: और महाराष्ट्र से हमारे श्रोता के शुक्ला लाइन पे हैं. शुक्ला जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
4: नमस्कार सभी को. मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आज अभी भी गोल्ड का रेट इंग्लैंड में तय होता है इंडिया का भी, और गोल्ड और डॉलर में क्या संबंध है?
2: देखिए, गोल्ड के रेट की जहां तक हम लोग बात करें, कॉमेक्स के आधार पर जो है वो रेट लिया जाता है. और रहा सवाल कि डॉलर उसके मुकाबले में क्या है, देखिए डॉलर मजबूत होता है तो उसका जो है वो नकारात्मक असर हमें सोने को में देखने को मिलता है, और डॉलर कमजोर होता है तो सोने के भाव में तेजी आती है.
1: और वी आर जॉइंड बाय विशाल फ्रॉम दिल्ली. जी विशाल जी, सवाल पूछिए अपना.
5: मार्केट मंत्री जी नमस्कार. जैसे मैं ये जानना चाहूंगा, 3-4 दिन से आईटी सेक्टर थोड़ा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो ये आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं?
2: देखिए, आईटी सेक्टर में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि बीते दिनों जो नतीजे आए हैं वो नतीजे अच्छे रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं कि शायद आने वाले दिन भी अच्छे रहेंगे. उनका जो कहते हैं ना कि आउटलुक भी जो वो बता रहे हैं, उसमें थोड़ी स्थिति बेहतर है. और अगर आप याद करिए तो जो हमारी देश की एक बड़ी आईटी कंपनी, उनके चेयरमैन साहब ने ये भी बात कही थी कि जो भी हम एआई की बात करते हैं, एआई के लिए भी हमें एचआई और जो ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी. इसी तरीके से एनविद्या के अगर आप सीईओ की बात को याद करें, तो उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज हैं उनकी जरूरत बनी रहेगी. तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके वजह से आप आईटी कंपनियों में तेजी देख रहे हैं. अब प्रश्न ये कि आने वाले समय में कैसी स्थिति रहेगी,

0: देखिए, ये सब कुछ निर्भर करता है कि ये लड़ाई का जो माहौल है उसमें किस तरीके से सुधार होता है। अगर वो सुधार होता है, मांग बढ़ेगी और उस मांग का फायदा जो है वो आईटी कंपनियों को देखने को मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा ये जो 1-2 महीने हैं, थोड़े से अभी अनिश्चितता के समय में है, उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो लड़ाई अभी शुरू दोबारा शुरू हुई है वो लंबा ना खींचे, तो इसका फायदा जो है हमें आईटी सेक्टर्स में भी देखने को मिल सकता है।
1: जॉइंड बाय तरुण फ्रॉम गुरुग्राम। जी तरुण जी, सवाल पूछिए अपना। जी
2: गुड इवनिंग। माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर टेक ऑन द डिफेंस स्टॉक इवन द करंट सिचुएशन? एंड सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू कोची शिपयार्ड कंपनीज स्टॉक प्राइस।
0: तरुण, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी वी कैन नॉट डिस्कस नेम ऑफ एनी कंपनी, any specific stock cannot be mentioned, but sector you have asked about the defense sector. Of course, defense sector is doing well, and at this moment I feel that defense sector will have a potential to give a better return.
1: All right, moving on. HCL Technologies today reported its financial results for the first quarter of the current financial year, that is from April to June. The company's revenue increased by 13.9% on an annual basis to 34,579. The company's revenue grew by 1.76% on sequential basis. The company's net profit rose by 3% to 4,624 crore rupees on quarterly basis. The country's third largest IT services company also announced an interim dividend of 12 rupees per equity share. And,
3: और चलते हैं अगली खबर की ओर। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ अमरीकी डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गया। इस तरह इसमें 19% की वृद्धि दर्ज की गई। शिशिर, बहुत ही अच्छी खबर है जिस तरह से हमारा निर्यात बढ़ा है।
0: बिल्कुल, देखिए निर्यात का बढ़ना अच्छी खबर है, लेकिन एक चीज और भी देखिए कि आयात भी बढ़ा है और जिसका असर जो है वो हमारे व्यापार घाटे पर देखने को मिला है। लेकिन अभी के समय में हमें आयात में ये भी देखना चाहिए कि आयात किस चीज का बढ़ा है। अगर कच्चे माल, मशीन, इन सब चीजों का आयात बढ़ रहा है तो वो बुरी खबर नहीं है, बल्कि वो हमारे निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगा। तो आयात बढ़ने को लेकर के जब कभी भी हम चर्चा करें तो हमें ये भी देखना चाहिए कि किन चीजों का आयात बढ़ा है। और यदि आयात में इस तरह के सामान हमें देखने को मिलते हैं तो उसको लेकर के हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आने वाले कुछ समय में उसका असर एक सकारात्मक देखने
3: जी, जैसा आपने कहा श्री जी, अलग से हमारे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन वस्तुओं में और सेवाओं में दोनों की दृष्टि से अगर हम देखें तो आयात में भी 26% की वृद्धि हुई।
1: एंड गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क बाय एक्सपेंडिंग इट्स बास्केट बाय आउटसोर्सिंग फ्रॉम, आई मीन बोथ इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट।
0: सर्टेनली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इफ यू आर हैविंग मोर एंड मोर कैपिटल गुड्स in import, more and more API imports are there, that is good for us. So import is not a bad word. The thing is that what we are importing.
1: Right.
3: और दिल्ली से हमारे श्रोता रमेश लाइन पे है। रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
4: मेरा ना क्वेश्चन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग स्कीम, NSS।
3: जी
4: सर, मैंने ना 91 में सर जी 45,000 सर जी पोस्ट ऑफिस में लगाए थे, तो सर अब वो पोस्ट ऑफिस वाले कह रहे हैं कि अपने पैसे निकाल लीजिए क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम बंद कर दी है। तो सर मेरा सबसे क्वेश्चन ये हैगा कि सर जब मैं पैसा निकालूँ क्या ये टैक्सेबल सर होगा, नॉन टैक्सेबल रहेगा सर? और सर ये बजट में ना सर गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था, किसी ने मुझे बताया कि ये गवर्नमेंट ने बोला आप निकालेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर। सर मैं सर के ओपिनियन जानना चाहता हूँ सर। मैं
0: देखिए नेशनल सेविंग स्कीम, अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको हम लोग NSE के नाम से जानते हैं, वो अब उस रूप में है। आप अगर

0: पैसा निकालते हैं वो टैक्स ऑलरेडी कट गया है। इसका जो सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ईटीई, यानी कि जब आप पैसा लगाते हैं उस समय आपको एक निश्चित रकम तक कर में छूट मिलती है, उसके बाद जो उस पे ब्याज जोड़ता जाता है वहां पर टैक्स कटता है, और जब आप पैसा निकालते हैं तो ऑलरेडी चूंकि टैक्स कट चुका है तो वो आपके ऊपर वो एग्जेम्प्टेड होगा, यानी कि उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है।
1: All right, we are now joined by Shankar from Bhopal. जी शंकर जी, सवाल पूछिए।
2: नमस्ते मार्केट अथॉरिटी सर, मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है, ना मार्केट से है ना फाइनेंस से है। मेरा सवाल सर ये कि हमारे यहाँ बहुत सारा विकास का काम हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में सीवर लाइन डल रही है, सड़कें बन रही है, बट द क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट अप टू द मार्क, ये बिकॉज ऑफ यू नो जो भी रीजन हो, L1 L2 के चक्कर में सस्ते को लिया जाता है और काम और सस्ता होता है, तो इसका क्या, इसके इंप्रूवमेंट के लिए क्या किया जा सकता है?
1: Well, I think we can't take that question because we are limiting ourselves to anything which is related to the financial aspect of the country or the markets, right? So this is beyond our syllabus, to be honest and to be precise. All right, let's move on with more news. India's retail inflation accelerated to 4.38% year on year in June, breaching the Reserve Bank of India's midpoint target. The June inflation reading was moderately higher than the 3.93% recorded in May. Retail inflation continued to rise for the sixth consecutive month under the new Consumer Price Index CPI series. According to data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, inflation in rural areas edged up to 4.74%, while in urban regions it rose to 3.92%. The food inflation rate based on the All India Consumer Food Price Index stood at 5.32% last month, up from 4.78% in the preceding month. According to the data, the increase in inflation in the previous month was mainly attributed to rising prices in personal care, social protection, restaurants and accommodation services, food and beverages and intoxicants. Your comment on this?
0: See, one factor is that there is a complete pass-through of petrol diesel price hike, and that is being reflected in the inflation number. The second is, of course, precious metal, whether we talk about silver jewelry or whether we talk about gold, diamond and platinum jewelry. In fact, silver jewelry, the inflation rate is 133%, which is not a small number.
1: Absolutely.
0: And the good thing is that the vegetable prices, I mean, especially when we talk about onion and potato, they are in the disinflation. That means they are in the negative territory. But one of the ingredient of our thali, which is ginger, adrak.
1: Yes, yes.
0: That is very costly. Jeera. That's a cummins, that is also very costly. So some of the food items are costly, some of the food products are costly. So we have the pass-through, then we have the precious metal and some of the food items. So combination of all those three have resulted in the 4.3% of the inflation for the month of June.
1: And we know that there is likely to be less monsoon, you know, as is being predicted
0: that is
1: by the IMD.
0: Yeah, that
1: so that's
0: is
1: a bit of a worry.
0: Yeah, that is a concern, and that is what we are expecting, that the inflation will be over 4% in the coming months also.
3: And our Shrota Deepak has joined us. Deepak ji, namaskar. Tell us what you want to ask.
4: Namaskar, sir.
0: Namaskar.
3: Yes, sawal puchho.
4: सर ये जैसे मार्केट में मैं ना पहले इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता था, निफ्टी और इन पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता था, तो ये गैप अप और गैप डाउन को जो मैकेनिज्म है ये मेरी समझ से बाहर है कि मतलब एक ही नाइट में सेंटीमेंट कैसे चेंज हो जाता है। सुबह सुबह गैप अप होके जैसे आज ही हुआ था गैप डाउन होकर शाम तक गैप मतलब फिल हो गया था, तो इतनी जल्दी सेंटीमेंट कैसे चेंज होते हैं सर?
0: तकनीक में समय बहुत कम लगता है, तकनीक जो है वो सूचनाओं को बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता है। तो जब आप कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो जाहिर सी बात है कि रात की घटनाएं सुबह की घटनाएं असर करती हैं, लेकिन दोपहर के बाद अगर परिस्थितियां मान लीजिए थोड़ी सी सकारात्मक खबरें आती हैं, कुछ क्षेत्र में अच्छी खबरें आती हैं, सरकार की तरफ से अच्छी खबरें आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका बदलाव देखने को मिलता है। तो इसका सीधा सीधा जवाब मैं इतना ही कहूंगा कि तकनीक की वजह से सूचनाओं का जो प्रवाह है जिसमें तेजी आई है उससे बाजार में भी जो है वो पल दो पल जिसको कहते हैं बदलाव देखने को मिलता है।
1: राइट, ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट ऑयल प्राइसेस नाउ। वेल, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज टुडे आफ्टर रिन्यूड मिलिट्री स्ट्राइक्स बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान रीइग्नाइटेड कंसर्न्स ओवर एनर्जी शिपमेंट्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ब्रेंट क्रूड वॉज ट्रेडिंग 3.4% अप एट $78.59 पर बैरल। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वॉज ट्रेडिंग 3.5 0.5% up at $73.

0: $1.89 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1% down at 1,42,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.3% lower at 2,20,140 rupees per kilogram a short while ago.
1: Or multi-commodity exchange mein August anubandh wala sona 1% ki giravat ke saath 1,42,066 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.3% की गिरावट के साथ 2,19,823 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी. शशि जी, आप क्या कहना चाहेंगे सोने के मूल्य के बारे में?
2: देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महंगाई दर में चांदी की महंगाई दर और सोने की महंगाई दर कितनी है, लेकिन हकीकत यह है कि दैनिक आधार पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर सोने और चांदी दोनों में जो है गिरावट देख रहे हैं, और एक बहुत ही ऊंचे स्तर से गिरावट आई है क्योंकि डॉलर लगातार मजबूत हुआ है. तो वहां पर जो इतनी मजबूती आएगी उसका असर आपको यहां पर देखने को मिलेगा. और दूसरी बात यह भी है कि जो वैश्विक अनिश्चितता का दौर था उसकी में कहा जाता था कि सोने के भाव बढ़ेंगे, लेकिन इस बार उल्टा रहा है. सोने में उस तरीके की स्थिति देखने को नहीं मिली है. उसकी एक वजह यह भी है कि डॉलर की स्थिति अगर अलग रही है तो उसका असर आपके सोने पर पड़ा है.
1: और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. शशि जी से कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: नाउ द हेडलाइंस अगेन. थैंक यू शशि जी. वेल, इन द इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एजेस अप 47 पॉइंट्स, निफ्टी

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से आपने ये गाना सुना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। शायद यही सच्चे रिश्तों की पहचान है, जहां शिकायतें भी मोहब्बत से की जाती हैं और खामोशियां भी वफादारी निभाती हैं।

गुलामी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 17 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही पंकज गोस्वामी के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

अर्थ फिल्म से आपने नज्म सुनी जगजीत सिंह की आवाज में। इसे कैफी आजमी ने लिखा और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतरिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान के वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकुनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोसकोस्मोस के सोयुज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकीना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के लिए उद्योग आधारित चुनौतियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। विजेताओं और उनके कार्यों का प्रदर्शन वेव्स 2027 के दौरान आयोजित क्रिएटोस्फेयर में किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव जमा करने और चुनौतियों के चयन के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े इच्छुक संस्थान 31 जुलाई तक wavesbazaar.com पोर्टल पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविन्द्र सदन में दिव्या कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। इसका उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु जैसे भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते नजर आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर टाइम हुआ है रात के 3:10 और अब शुरू होता है कार्यक्रम हमराही और मैं हूं पंकज आपके साथ और दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं। अभी के लिए शुरुआत करते हैं वारिस मूवी के इस गाने के साथ।

मूवी का नाम प्यासी, आंखें किशोर दा और आशा जी की रोमांटिक आवाज में गाना था। उषा खन्ना का म्यूजिक और इंदिवर के बोल थे। 14 जुलाई की इस आधी रात में मेरे यानी पंकज के साथ हमराही शो सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और इस पूरे घंटे हम सुनेंगे पुराने ड्यूट्स गाने। इन गानों को सुनकर रहना, मन की थकान मिट जाती है, क्योंकि मन खुश तो सब खुश। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। अभी के लिए सुनिए हीरो फिल्म का गाना मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, और फिर मैं मिलता हूँ आपसे।

किशोर कुमार और आशा जी की आपके लिए गाते हुए फ्रॉम द मूवी ये वादा रहा। आर डी बर्मन का म्यूजिक और गुलशन बावरा के बोल थे। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ। शो का नाम है हमराही। और पता है, दिल के सुकून को ना हर हाल में बचाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये खो जाए तो दुनिया की हर महफिल बेरंग लगती है।

और प्यार और रिश्ते नातों में तो ये बात और भी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि रिश्ते बिगड़ने पर ना सुकून खो जाता है। मैं हूँ पंकज आपके साथ, और एक चीज़ पता है, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि पसंद का रिश्ता अगर हमारी ज़िंदगी में है तो ज़िंदगी जो है ना खिली हुई चांदनी जैसा हो जाता है। यकीन मानिए, एक पसंदीदा इंसान आपकी ज़िंदगी में है ना तो वो हज़ारों लोगों के ऊपर भारी पड़ जाएगा। वो इतनी खुशियाँ आपको दे देगा कि फिर ऐसा लगेगा यार, जब इतना एक बंदा मेरे पास है तो मुझे हज़ारों की क्या ज़रूरत है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है तो सच में बहुत अच्छा नसीब है आपका।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

एक बात है ना, आप अच्छे से मान लीजिए कि जिंदगी जो है एक प्यारे से रिश्ते के बिना चलानी बहुत मुश्किल है, इसलिए रिश्ते कमाइए। पैसे तो खैर हम सब कमा ही रहे हैं, लेकिन रिश्ते अगर अच्छे हो, एक ही रिश्ता अगर अच्छा हो, तो वो सारी खुशियों की वजह बन सकता है। बाकी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर अब हमराही शो का समय जो है वो पूरा होने वाला है। सुबह 4 बजे से हिंदी और इंग्लिश में आप समाचार सुनेंगे और फिर सुबह 4:10 पर अगला शो होगा अरुणिमा। मैं पंकज आपके साथ फिर से उसी शो में मिलूंगा। तो अभी इन गानों का मजा लेते रहिए और गानों की बीट्स पर झूमते रहिए।

0: प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा कर रहे हैं। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोसकोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के लिए उद्योग आधारित चुनौतियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव जमा करने और चुनौतियों के चयन के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े इच्छुक संस्थान 31 जुलाई तक wavesbazaar.com पोर्टल पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविन्द्र सदन में दिव्य कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। इसका उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और ओडिशा में बिजली के साथ तेज हवाओं के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with the U.S. Trade Representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम। अरुण मैम और मैं पंकज हूँ आपके साथ। तो इन दो गानों के बाद आपसे मैं मिलता हूँ और अभी शुरुआत करते हैं इस गाने से। जहरीला इंसान फिल्म का नाम है और किशोर कुमार की आवाज़ है।

राकेश की आवाज में मेरी जंग फिल्म से ये गाना था। इस मूवी के लिए नूतन जी को और अमरीश पुरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और बिल्कुल सही मिला था। अरुणिमा शो में मैं हूं पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के फिल्म गोल्ड चैनल पर। जिंदगी एक जंग तो है ही, लेकिन इसे धैर्य, मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी के बलबूते पर जीता जा सकता है, क्योंकि सत्य ही हमेशा जीतता है। 14 जुलाई मंगलवार की छोटी सी सुबह हो चुकी है और इन दो गाने के बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगा और कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस यही स्टूडियो की कुर्सी पे बैठकर आपके साथ गाने सुन रहा हूँ। आप उधर गाने सुनिए, मैं इधर गाने सुनता हूँ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

गाना जो है वो एक तरह से आई ओपनर का काम करता है, क्योंकि हमें मिले हुए पदार्थों का जो है अहंकार हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि बस ये चीज़ जो है हमारे पास है और हम ही इसके मालिक हैं। लेकिन फिर उसके बाद याद आता है कि ये सब तो एक दिन यहीं रह जाएगा। इंसान का शरीर जो है वो पंच तत्व में जाता है और रह जाती हैं सिर्फ यादें। हमारे कर्म ऐसे हों कि कोई हमें याद करे ना तो प्यार से याद करे और हमारे बारे में अच्छा बोले, कोई आपके जाने पर दुखी ना हो, मतलब कि कोई खुश ना हो कि नहीं भाई वो अच्छा हुआ वो चले गए। नहीं नहीं होना तो ये चाहिए कि लोग आपके बारे में अच्छा बोलें और ये कहें कि हाँ दुख तो हुआ वो गए हैं लेकिन जहाँ भी वो खुश हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर अरुणिमा शो में मैं हूँ पंकज आपके साथ। ज़िंदगी में खुशियाँ मिले ना तो उन्हें ज़रूर बांटिए, क्योंकि इससे खुशियाँ

0: सुबह के 4:41 हो चुके हैं और गाइड मूवी का ये गाना लता जी की आवाज में था, एस डी बर्मन का संगीत और शैलेंद्र के बोल थे। ये मूवी हमने देखी ही है, लेकिन बार बार इस फिल्म को देखने पर पता है जीवन के कई सूत्र हमें पता चलते हैं। एक सूत्र तो यही है कि जिंदगी में सुख और दुख जो है वो भोगने ही पड़ते हैं और चाहे जो हो। लेकिन न्यूज़ में कई बार हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो दुखों से हार जाते हैं और अपना नुकसान करते हैं, ये बहुत गलत बात है। मैंने शो की शुरुआत में भी कहा था कि जिंदगी की जंग को जो है हम धैर्य, मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से जीत सकते हैं। बुरा समय अच्छा समय अपने पीछे छुपाकर लाता ही है, और वो जो बुरा समय होता है वो एक तरह से हमारी परीक्षा होती है। चुपचाप सहकर परेशानियों को पार पाने दीजिए और फिर खुशियों का सूरज सामने चमकता दिखेगा। अरुणिमा सुनते रहिए, मैं पंकज सिर्फ आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: संग रहे ना को फिर दुख को अपना

पास रखें, क्योंकि धीरे धीरे सुबह जो है वो तेज़ हो रही है। और अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से देखा है तो मुझे सामने जो सड़कें हैं ना वो गीली गीली नज़र आई है। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि बारिश हुई है, और वैसे भी छोटी छोटी बूंदों का मुझे कुछ दिख रहा है, तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि बारिश अभी दिल्ली में हुई है। खैर, अगले शो भोर सुहानी में मैं पंकज आपसे मिलूंगा, और अभी के लिए अरुणिमा शो के ये बचे हुए गाने सुनिए। फिर सुबह 5 बजे आप हिंदी और अंग्रेजी में न्यूज़ सुनेंगे, और उसके बाद फिर 5:10 पर मैं पंकज भोर सुहानी में आपके लिए और गाने लेकर आऊंगा। तो आप ऐसे गाने सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, गानों का मजा लेते रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ अमरीकी डॉलर रहने का आकलन है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए

0: ये चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वैश्विक शांति, सुरक्षा और समता मूलक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत का शांति दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र के लगभग 50 शांति मिशनों में करीब 3 लाख शांति सैनिक भेज चुका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 10 मिशनों में 4,300 से अधिक भारतीय कर्मी तैनात हैं। उन्होंने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज जल डमरू मध्य से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका आज से हॉर्मूज जल डमरू मध्य में ईरान के जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करेगा। साथ ही ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीका के फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मूज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अमरीकी सेना को मदद देने वाले किसी भी देश को युद्ध में शामिल माना जाएगा। अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर लागू करने की घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। 15 भारतीय पर्यटकों के शव स्वदेश लाए गए हैं। इन भारतीय पर्यटकों की वियतनाम के फुक्वोक द्वीप पर स्पीड बोट की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई पहुंचे। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाली एक नाव बंगाल की खाड़ी में पलट गई। इसमें 9 मछुआरों की मौत हो गई है और 6 अन्य अभी भी लापता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ द 15 इंडियन टूरिस्ट्स हु वर किल्ड इन अ स्पीडबोट एक्सीडेंट ऑफ वियतनाम्स Phu Quoc Island have been brought back home. The Embassy of India in Vietnam has said in a social media post that mortal remains departed from Ho Chi Minh City by Vietnam Airlines flight and arrived in Mumbai. A speedboat carrying 32 Indian tourists and 4 local crew members capsized off Phu Quoc Island in Vietnam on Friday, leaving 15 tourists dead. 16 survivors have also returned to India and one tourist remains hospitalized in Vietnam. A fishing trawler that had gone missing off the West Bengal coast earlier this month has been found capsized in the Bay of Bengal, with 9 fishermen confirmed dead and 6 persons still missing. The trawler had 15 fishermen on board. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the tragedy. They conveyed condolences to the families of the deceased and wished a speedy recovery to those injured. The Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured.

सुबह के 5:10 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है मेरे यानी पंकज के साथ भोर सुहानी शो। दो गानों के बाद आपसे मिलता हूं और रामलखन फिल्म के इस गाने के साथ इस शो की शुरुआत करते हैं।

बीत गया वो एरा जब ऐसे गाने बनते थे, सुनकर ही मतलब मजा आ जाता है। बेटा फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज थी, आनंद मिलिंद का म्यूजिक और समीर के लिरिक्स थे। और बहुत ही हसीन सुबह हो गई है, मतलब इससे भी ज्यादा तो अच्छा मौसम हो गया। थोड़ी सी बारिश हो गई है दिल्ली में और मौसम तो सच में इतना प्यारा हो गया है, मतलब स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूँ, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। 14 जुलाई का आज मंगलवार है और मंदिरों में आज स्पेशली भगवान के दर्शनों की भीड़ होती है, और दिल्ली में भी बहुत फेमस टेम्पल्स हैं और ट्यूसडे को भी मतलब काफ़ी भीड़ लगती है मंदिरों में, यानी पूरी रौनक। हमारे देश की राजधानी दिल्ली की जो है वो बात सबसे अलग है, यानी फुल ऑफ लाइफ। अब ये शहर है ही ऐसा। वैसे हाँ, बारिश हो चुकी है थोड़ी सी और बारिश का मौसम है और बाकी बहुत अच्छा मौसम है। और आज मंगलवार है, बहुत सारे लोगों को अपने ऑफिस के लिए, दुकान के लिए निकलना होगा, तो आप बाहर निकलें तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अम्ब्रेला आपके पास जरूर हो, ताकि अगर बीच में बारिश आ जाए तो आप भीगे नहीं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं पंकज हूं आपके साथ। शो का नाम है भोर सुहानी। सुबह के 5:23 इन दो गाने के बाद आपसे फिर मिलता हूं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।